कहते हुए रकू में चले जाते हैं, और रकू करते वक्त अपनी दोनों हथेलियां घुटनों पर रख लेते और उंगलियों को खोल लेते और घुटनों को पकड़ लेते, अपने दोनों बाजू सीधे रखते, अपनी कमर को सीधा रखते, अपने सर को कमर के साथ हमवार रखते, ना उठाते और ना झुकाते, अपने पांव की उंगलियां किबले की तरफ का रुख करते और सुभान रब्बिल अज़ीम 3 मर्तबा पढ़ते। फिर रकू से अपना सर उठाते, समय अल्लाह लिमन हमीदा कहते हुए और अपने दोनों हाथ उठाते कंधों के बराबर या कानों तक। कानों तक का मतलब यह नहीं है कि कानों को पकड़ना, कानों को पकड़ना सुन्नत से साबित नहीं, ना कानों को हाथ लगाना सुन्नत से साबित है। जब आप रफ़ेदेन करते हैं तो आपके हाथ या तो कंधे तक होने चाहिए या थोड़ा सा ऊपर कानों की, यानी जो उंगलियों की सतह कानों तक हो, ऊपर नहीं। बाज़ लोग अंगूठे को कान में रखते हैं या कान पकड़ लेते हैं, सुन्नत से साबित नहीं है। फिर समय अल्लाह लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते, और बाज रिवायत में आया है हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी मिल السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شيء بعد। अगर कोई इस तरीके से पढ़ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मसनून है। अगर इसी पे इक्तिफा करे रब्बना व लकल हम्द तब भी दुरुस्त है। फिर खड़े रहते जब तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर ना वापस आ जाती, इत्मीनान के साथ। फिर सजदे के लिए झुकते, अल्लाहु अकबर कहते हुए, और सजदा करते, और सजदा करते 7 हड्डियों पर, दोनों हथेलियां जमीन पर रखते, दोनों घुटने जमीन पर रखते, और पांव की उंगलियां भी दोनों पांवों की जमीन पर रखते, और पेशानी और नाक को जमीन पर रखते। उंगलियां, उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ और सर दोनों हाथों के दरमियान में, या हाथ को आप कंधों के बराबर भी सजदे के वक्त कर सकते हो, यह भी सुन्नत में साबित है। और बाजू को अपनी करवटों से दूर करना है, जमीन पर नहीं रखना, और अपने हाथ को अपने बाजू से दूर रखना है और हाथ को खोल लेना है। एक रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल की सफेद नजर आती थी पीछे वाले से, पीछे जब देखता था। अपनी रान अपने पैर से दूर कर लेते, अपने पिटनियां अपने रान से दूर कर लेते, और सजदे के वक्त उंगलियों पांव की उंगलियों के रुख किबले की तरफ होते, मुड़ी नहीं होती, पांव के सिरे उंगलियों के सिरे मुड़े हुए होते और किबले की तरफ उनका रुख होता, और सजदे में पढ़ते सुभान रब्बिल अला 3 मर्तबा। और भी दुआएं हैं, मैं इसी पे इक्तिफार करता हूं आसानी के लिए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए अपना सर उठाते और बैठ जाते, और बैठते वक्त अपना बायां पांव बिछा लेते और उस पर बैठ जाते, और दाएं पांव को खड़ा रखते, इत्मीनान के साथ बैठ जाते उस वक्त तक जब तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस नहीं आ जाती, और रब्बिग़फ़िरली कहते। और सुन्नत में रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वज़बुरनी वरफ़ानी वहदनी वआफ़नी वरज़ुक़नी भी साबित है। इतनी लंबी दुआ आपको आती है तो ठीक है, वन रब्बिग़फ़िरली वरहमनी या रब्बिग़फ़िरली पर इतफा करते हैं 3 मरतबा तो कोई हर्ज नहीं है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए 2 मरतबा सजदा करते, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले सजदा किया। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए अपना सर उठाते और थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाते, जिसे कहते जलसतुल इस्तिराहा, यह भी मसनून है। थोड़ी देर बैठते और फिर दूसरी रकत के लिए उठ के खड़े हो जाते, और दूसरी रकत उसी तरीके से पढ़ते जिस तरीके से पहली रकत पढ़ी। और जब 2 रकत पढ़ने के बाद अत्तहियात पर बैठते तशहुद पर, तो अपनी

है रमजान में। बाज लोग अपनी तिजारत को चमकाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं और वो भी नाजायज किस्म के। टीवी चैनल्स पर बेपर्दा औरतों का इस्तेमाल करना, इस भरोसे पर कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मकबूल होगी और ज्यादा बिकेगी। क्या हराम से रिस्क में कभी कोई बरकत बाकी रहती है? सुभान अल्लाह। बाज लोगों की जिंदगी में रमजान की शान जो इनसे ज्यादा बुरे हैं और इसी तिजारत के ताल्लुक से है, मुख्तलिफ चैनल्स में खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करना, शान रमजान प्रोग्राम है, फैजान रमजान प्रोग्राम है, या कुछ और ऐसे रमजान के नाम पर अपने बिजनेस को चमकाने की कोशिश करते हैं। अजब बात यह है कि किसी ने मुझे एक क्लिप दिखाया, मैं खुद हैरान हो गया। शान रमजान के ताल्लुक से स्टेज सजा हुआ है, बहुत बड़ा स्टेज, पीछे कुछ कुर्सियां रखी हैं और आगे भी कुछ जगह है बैठने की। होस्ट हजरात जो आगे बैठे हैं, ऑडियंस उससे भी दूर है, बहुत बड़ा स्टेज है। पीछे कुछ जो दो तीन पत्नी कितनी कुर्सियां हैं उसमें चंद मौलवी हजरात बैठे हैं, दाढ़े को चमका के, सुरमे लगा के, रंग बिरंगी पगड़ियां और कपड़े पहनकर, जैसा कि मोबाइल फोन में वॉलपेपर होता है ना, यूं चिपके हुए दीवार के साथ वॉलपेपर बने हुए। और पता नहीं उनको कितना मौका मिलता है, वो क्या कहते, कुछ ना छात पढ़ते हुए पता नहीं क्या कहते, वो बेचारे बैठे दीवार की टेक लगा के, और जो होस्ट हजरात है वो दरमियान में है, पूरा फोकस उन्हीं पर है। और पता नहीं कितने घंटे का प्रोग्राम होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सहरी के वक्त तक ये प्रोग्राम चलता है। रात के उस पहर में जब अल्लाह अज़्ज़ वजल नाजिल होते हैं अस्समाउ दुनिया पर, जैसा कि अल्लाह ताला का छाया निशान है, और यह मनादी होती है, कोई है मगफिरत तलब करने वाला मैं उसकी मगफिरत करूं, कोई है मांगने वाला मैं उसे अता करूं। और ये लोग इस खेल तमाशे में मसरूफ होते हैं, और उसमें कई खेल होते हैं, कई तमाशे होते हैं, और ऐसे और भी कई प्रोग्राम हैं। ताज्जुब उन लोगों पर नहीं जो होस्ट आगे जो बैठे हैं, वो जो तीन मौलवी हजरात पीछे दीवार की से चपक चिपक कर बैठे हैं, इनका क्या काम है यहां पर? इनके सीने में कुरान है, शक्ल सूरत से ये दीनदार है। अल्लाह के लिए मुझे बताएं, बाकी हर बुराई एक तरफ, ये देखने वाले बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि ये शान है कुरान की और दीन की? बच्चे क्या बनना पसंद करेंगे, वो एंकर जो जिनके ऊपर फोकस है, या ये हाफिज कुरान जो पीछे वॉलपेपर की तरह चिपक कर बैठे हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं बच्चों? कहते यार इसमें अच्छी बातें भी तो होती हैं, लोगों के मसाइल हल होते हैं, बिगड़े या मायूस लोगों
کہ مسائل کا بعض اوقات حل بھی کر دیتے ہیں۔